0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन।
7: यौनिम सरोका बापो
8: राशालेका
7: द्रेव सोका बा राशालेका द्वितो वाचो नेमवान वर्त बगे दो त्रि दाने वाचो शाबा
9: या लका से बगानी राजा दा कबाब पमंग बांधी डीर दी लेमू में पे हम न छोड़ कड़े दे
10: न गुल काका ता सुखरे अमीर औले गलम मेलमनो ल कबाब पड़म
9: राजा यो कबाब मु सरो खरा छ दखले खवान दे वर सर खशी
10: न गुल काका जमा पाल दे मैदा के में जख्म दे और पकी बलीगी हजमा में नाराजी
9: गोरा सेवनी तो परुनी बचे और मैदा दे ब्याह खराब था नुस्खा दरता है हम उस लाड़ से आओ दो बड़ा ग्राम हर मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर ना एसेट गो द मैदे सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल न बाद चबदे मैदा दासी शी ने बाज मवी
10: गुल काका उस पने न हजमई खुदा से रातकारी चे दमेदे डेर खब होतल ले जका होता था सत्रे कबाब प्राती दी गुल काका दानु मौरंगी रात ब्याह हुआ या चे सुख बदल सिरप प्राने की
9: नुमिये एसेट गोदे शिन रंग के पे मैदा ग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के खप आसानिया सरा मिलावेगी दानुमिये उलिका एसेट गो चे हेर दरना निशी
10: गुल काका द स्पेलिंग रात हम हुआ या चिवी लिकम
9: जदर तवायम तई लिका ACIDGO ACIDGO ACIDGO
11: कचरिस्ता सुखलीला त्रवी त्रवी उभराजी दरूटे न पसमु प मैदा भूजवी बार बार अडरकी कवे मैदा के मो जखम या तेजाबियत वी नु हम उस जानला दमनलिशिवी कंपने दमेदी सिरप एसेट गोरा वाखले कुमची द जिला बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के प आसानिया सरा मिलावेगी मेन डिस्ट्रीब्यूटर दे मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोड़ बटाग्राम दराबितीश मेरा दा 0311 158 77 45 बल नंबर दे

पीर मलता है, शो नाइस है। टिकटॉक पर आपकी वीडियो कैसी दिखती है? बहुत अच्छी दिखती है, जरा से तोड़ेंगे ना। और टिकटॉक के

0: हाँ जी ग्रांड उर्दू का तस्वीर रेडियो अमन एफ एम अटसी शरिया चार बटा ग्राम प्रोग्राम दिजम गदीन और दुनिया प्रोग्राम तस्ती है वीरतर दो बजे पूरी पर रेडियो अमन एफ एम अटसी शरिया चार बटा ग्राम बांधी और 0309711898 मनी तस मुक्त टेलीफोन कॉल है 85 मनी मुक्त मैसेज हमरा ले गले छियो कॉल तरफ तक गुरु चुप लाइन मुक्सर सुखती अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो
0: जी अस्सलाम वालेकुम
1: मुलाकात हुई थी
0: हाँ जी।

हाँ जी ग्रहण उर्दिन को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम टी शरीय चार बटा ग्राम प्रोग्राम दिन और दुनिया रबी और प्रोग्राम टीम अख्तितम तरसी सुहेल भाई तसु मदीनाथ दरखास्त करो दकशानी आयशा दू मदीनाथ दरखास्त करो दि सरा सरा जुनेद अक्रम दू मदीनाथ दरखास्त करो नूर कसम दिनाथ दरखास्त को हजरत वाड़ू छुटे मुंग सर डेर कम हो इनशाला प्ले कर।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: यौनिम सरो का बापो
8: राशालेका
7: द्रेवसो का बा राशालेका द्वितो वाचो नेमवान वर्तम के दो त्रिदाने वाचो शब
9: या लका से गनी राजा दा कबाब को मुंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
10: न गुल काका ता सुखरे अमीर औले गलम मेलमनो ल कबाब पड़म
9: राजा यो कबाब मुंग सरो खरा छ दखले खंदे वर सर खशी
10: न गुल काका जमा पाल दे मैदे के में जख्म दे पूर पटी बलीगी हजमा में नाराजी
9: गोरा सेवनी तो परुनी बचे और मैदा दे ब्याह खराब था नुस्खा दरता है हम उस लाड़ आओ दो बड़ा ग्राम हर मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर ना एसेट गो द मैदे सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल न बाद चिब दे मैदा दासी चो उस पने बाज मवी
10: गुल काका मैदे उस पने न हजमई होता सिरा तहकारी चिदमेदी डेर खब होतल ले जुका होता था सत्रे कबाब रहती थी गुल काका दानुम और रंगे रहता ब्याह हुआ या चि सुख बदल सिरप प्राने की
9: नुमिये एसेट गोदे शिंद रंग के पे मैदा जोड़ा था और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के खप आसानिया सरा में लावेगी दानुम ये उलिका एसेट गो चेहर डरना निशी
10: गुल काका दस पे लिंग रहता हूँ मुआया चिवी लिकम
9: जदर तवायम तई लिका ए सी आई डी जी ओ एसेट गो एसेट गो एसेट गो
11: कचरिस्ता सुखलीला त्रवी त्रवी उबराजी दरूटे न पसमु प मैदा भूजवी बार बार अडरकी कवे मैदा के मो जख्म या तेजाबियत वी नुहुम उस जानला दमनलिशिवी कंपने दमेदी सिरप एसिड गोरा वाखले कुमची दजिल बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर की प आसान त्यासरा मिलावीगी मेन डिस्ट्रीब्यूटर दे मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोड़ बटाग्राम दराबितीश मेरा दा 0311 158 7745 बल नंबर दे

0: दे।
1: अभी भाई जरूरत तो था मोकड़ो माओ मोकड़ो, मोहब्बत तो था मोकड़ो माओ मोकड़ो, ता दुनिया गुख्ता मत गुख्ते खुदाया, इबादत हो ता हूँ मोकड़ो माँ हूँ मोकड़ो, तब यारा नगले जब या पे इंतजार हूँ, फल आदत हो ता मोकड़ो माँ मोकड़ो।